0: कोई बात है, डरने की बात नहीं है, प्यार का तूफान है, कोई असली तूफान कुदरती आफत नहीं है। अब देखते हैं सबसे पहले किसने क्या कहा है।
1: कुछ ब्यूटीफुल लाइन सुनिए। जिंदगी जिंदगी खूबसूरत है पर जीना नहीं आता, हर चीज में नशा है पर पीना नहीं आता, सब मेरे बगैर जी सकते हैं, बस मुझे ही किसी के बिना जीना नहीं आता। इसलिए दोस्तों कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, जुमा मुबारक, सलमा अहमद किसुम।
0: बहुत शुक्रिया सलमा। सलमा के बाद ये पहला मैसेज था। सलमा के बाद रूपल, कल आपने बात की थी शायद, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैंने वो गाना आपके लिए आज मैं करूँगी, वालाई कहाँ हो तुम ज़रा आवाज़ दो, ये दूसरा भी आ गया, लेकिन कल का वो था ना, उस दिन का ना वो जो था, एक आपने एक दिन किया था न जाने किसने, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी, वो भी करेंगे और आपका भी। अब चलते हैं इनके पास, क्या कहते हैं।
2: वालेकुम परिन जी, कैसे आप? तमाम मुसलमानों को जुमा मुबारक, साथ में अशुरा की भी बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ तमाम मुसलमानों को, साथ में आपको भी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज परिन जी।
0: बहुत अच्छे हुस्ना मोहम्मद। जामिन अशुरा की बात कर रही हैं, आज हमारा 10वां है दिन जबकि हम अपने शहदा जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी मज़हब की खातिर। समझ, आप हैरान होंगे कि तब एक था यजीद, बहुत जालिम हुक्मरान था, तो उसने कैसे हमारे प्रॉफिट के जो थे नवासे, उनको कैसे मैदान में बुलाकर और कहा कि आप बैत करेंगे, मेरे फॉलोअर बन जाएं, जो मैं हुक्म करूं, मैं हुक्मरान हूं, आपको मानना पड़ेगा। अब ये जो हमारे प्रॉफिट के ख़ानदान वाले थे, उन्होंने कहा कि हम आपके हाथ पर कभी बैत नहीं करेंगे, आप एक जालिम और बदकार इंसान हैं, बद अखलाक हैं। उन्होंने नहीं की, वो खड़े रहे जालिम के सामने, पर सामने आखिर में उनको फिर काट वाट दिया गया, पानी से महरूम कर दिया गया। इस तरह का वाक़या आज आखिरी दिन है। रंजन विनोद क्या कहती हैं कि सभी को फ्राइडे का प्यार भरा नमस्कार। जयश्री थैंक यू, आपने तस्वीर भी भेजी है। और यहाँ पर हैं शमीम, कहते हैं ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक कंस्यूमिंग सार कैंडी एंड और फूड्स लाइक लेमन और पिकल कैन हेल्प काम द माइंड बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंसरी डिस्ट्रैक्शन। कहते हैं जब आपको खौफ आप पर तारी हो जाए, समझ, उसे पैनिक अटैक कहते हैं, जब अचानक आप परेशान हो जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, अगर वो होता है तो आप कुछ खट्टा खा लें, कहते हैं दिमाग उस तरफ लग जाता है, ज़रा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ध्यान वहाँ चला जाता है। वंडरफुल, थैंक यू शमीम, दैट वाज गुड। और परवीन जी, सर्टनली फिल्म इंडस्ट्री में कोई तूफान आया है और ईस्ट FM पे ऑफकोर्स। अब प्यार अली भाटिया, थैंक यू, आपका मैसेज मिल गया है। सोनल मोदा, जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर मूड, थैंक यू।
3: दिस इज ईस्ट FM, केन्या'स प्रीमियर एशियन मिक्स।

0: ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो।
1: प्रवीण जी, ना तोहफा से खेलो ना साहिल से खेलो, ये गाना फिल्म उड़न खटोला का है, 1955 की मूवी है जिसको मोहम्मद रफी।
0: ओके ठीक है, उड़न खटोला का है ये गाना। बहुत शुक्रिया आपका प्यार अली भाटिया छिंदर सैमी, थैंक यू। और सैमी, तीन बहनों को साइंस दान स्टडी कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है तीन बहनों का पीछा कर रहे हैं, एक्चुअली पीछा ही कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि क्यों चंद लोग इतनी बड़ी उम्र में भी चलते फिरते हैं, एक्टिव हैं, ज़हनी तौर पर दिमाग यानी उनका तंदुरुस्त है, चल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो की टीम इन तीन बहनों को देख रही है, जिनकी उम्र क्या है, मैंने दिए थे ना तीन नंबर, एक बहन सबसे छोटी जो है 103 साल की है, उससे बड़ी 104 की है, और उससे बड़ी 109 साल की है। तीनों बहनें समिन गिनीस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनमें भी इनका नाम दर्ज है। तीनों ब्राज़ीलियंस हैं, जी जी ब्राज़ील से इनका ताल्लुक है। समझ, टीम क्या करना चाहती है, वो देखना चाहती है डीएनए करके कि ये कौन से जीन्स हैं, उनको हम टेस्ट करें जो इंसान को इतनी लंबी आयु देते हैं, सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ये जीन्स इंसान को एजिंग से। अब ऑफ कोर्स बहनों का वही आंसर है जो हर एक का होता है, मैं बताएगा बड़ी एक्टिव हूँ, मैं चलती फिरती हूँ, मैं वर्जिश करती हूँ, मैं अच्छा खाना खाती हूँ। अब ये तो समय टिपिकल स्टीरियोटिपिकल आंसर्स हैं, क्या है कुछ पता नहीं, अब डीएनए की तलाश हो रही है।
2: आवाज़ वो जो साफ पानी की तरह हर रंग में रंग जाए, हर अंदाज में ढल जाए, नज़र ऐसी जो प्यार का पैगाम दे,

0: और स्वामी जगदीप नांद्रा है लंदन में, हमें रोजाना सुनती हैं। उन्होंने कहा है कि देखो, टेक एवरी चांस इन लाइफ, क्यों? बिकॉज सम थिंग्स ओनली हैपन वंस। जी ये तो सही है कि कुछ चीजें जिंदगी में सिर्फ एक बार होती हैं। जगदीप नांद्रा, थैंक यू। परवीन भट्ट, आपने सभी को जुमा मुबारक कहा है और कहा है मैं बहुत खुश हो रही हूँ गाने सुन सुनकर और आपके लिसनर्स को सुन सुनकर। वाह क्या बात है। यहाँ पर हैं कौन, शोभना और दिनेश, एक्नॉलेजिंग द गुड दैट यू ऑलरेडी हैव इन यू इन योर लाइफ इज फाउंडेशन फॉर ऑल अबंडेंस। कहते हैं कि मानना, एक्नॉलेजिंग, मानना कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है, कहते हैं ये बुनियाद रखता है आपको और भी मिले। क्या बताया, अबंडेंस की बुनियाद। अमीर अली राना, परवीन जी विशिंग यू एंड ऑल द बेमिसाल अंदाज फैमिली, ना तूफान से खेलो, आई जस्ट ट्यून्ड इन एंड अ ग्रेट स्टार्ट तूफान के साथ, दिल में एक राज छुपा है, कहते हैं कि दिखाऊं कैसे, हो गया है प्यार आपसे बताऊं कैसे। ओफ अल्लाह क्या बात है, दुनिया खेलती है मत लिखो, दुनिया कहती है मत लिखो नाम दिल पर, जो नाम दिल में है उसे मिटाएं कैसे। कहते हैं कि दुनिया कह रही है देखो पता है अपने दिल पर किसी का नाम ना रखो, पर कहते हैं कि वो ऑलरेडी है, उसको कैसे मिटा सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं मिटा सकते आप, और मिटाने की कोशिश भी ना करें।
1: नमस्कार परवीन जी, वेलकम, बहुत अच्छे अच्छे गाने की शुरुआत की आपने, थैंक यू वेरी मच। चंद्रिका वसंत गोसाई।
2: East FM, Kenya's premier Asian mix. It's

0: क्या कमाल का गुड़िया का गाना है, बहुत कम गुड़िया के गाने हैं हमारे पास। खैर अब देखते हैं शहाब जमान।
1: ग़वास से मोहब्बत का अल्लाह ही निगेबां हो, जिस दरिया के हर कतरे में दरिया सी गहराई है।
0: क्या बात है, क्या बात है। ग़वास से मोहब्बत मैंने नहीं देखा, आई मीन सुना हुआ था। ग़वास, ग़वास कहते हैं समझ तैरने वाला। ग़वास से मोहब्बत, मोहब्बत में जो तैरते हैं, बड़ी मुश्किलात का उनको सामना होता है। टुडे इन हिस्ट्री 1945 द यूनाइटेड नेशंस चार्टर वाज साइंड बाय 50 नेशंस इन सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड नेशंस। समय कितनी ये इफेक्टिव है, असरकार है, ये तो आपके सामने है। कोई जंग, कोई युद्ध ये रोक नहीं सकते। इट एस्टैब्लिश्ड द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पसेस प्रिंसिपल्स एंड administration structure and legally binds all member states to the prohibition of the use of force in international relations. Lo, today is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Karte jayen drug abuse par din samin manate jayen ye din, lekin ho wo bilkul jari hai, ताज़ा तरीन, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये तिजारत, चल रही है, कोई कमी नहीं आई इसमें।
2: जी मैं वापस आई परिन जी, आज तो इमाम हुसैन के नाम का अच्छा सा नात भी सुना दो ना प्लीज।
0: ओके कोशिश करती हूँ आज।

0: इंटरव्यू भी है, तो उसमें अगर वक्त मिलता है तो ऑफ कोर्स। प्यार अली भाटिया, आपका मैसेज है यहाँ।
1: रात सुहानी जाग रही है, ये गाना फिल्म जिगरी दोस्त का है, जिसको आनंद बख्शी ने लिखा है और जिसकी धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई है और जिसको मोहम्मद रफी और सुमन कन्यानपुर ने गाया है। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया।
0: थैंक यू प्यार अली भाटे, ये बिल्कुल मैसेज ठीक था। और आप शुरू में आपने वक्त नहीं ज़ाया किया, समझ, जब आप मैसेज रिकॉर्ड करें प्लीज़ शुरू में ना करें, लिख लें, लिख कर आप मैसेज पढ़ दें, फिर वो बिल्कुल ठीक होगा और छोटा होगा और वक्त ज़ाया नहीं होगा। एम एल विश्वकर्मा कहते हैं, वरी क्या है, फिक्र करना, कहते इट्स अ पेन यू चूज टू सफ़र, कहते ये आप अपने आप पर लेकर आते हैं बिफोर एनीथिंग हैज़ हैपन, आप फिक्र करने लगते हैं हालांकि कुछ फिक्र वाली बात हुई नहीं है। इट ड्रेन्स यू, इट एग्जॉस्ट्स यू, इट लीव्स यू लॉन्गर देन द प्रॉब्लम एंड स्टील्स योर पीस। बिल्कुल सही आपने कहा। अब समय चलते हैं मीरा राडिया। मीरा राडिया बहुत पुराने गाने पसंद करती हैं, स्पेशली 70s के, और समय बहुत इंटरेस्ट 60s भी, मीरा राडिया और इनके शौहर बहुत शौक से सुनते हैं बेमिसाल अंदाज। आज मीरा की बर्थडे है और जब भी मैं इनसे पूछती हूँ कि मैं आपको कौन सा गाना डेडिकेट करूँ, समय एक ही होता है गाना जो वो पसंद करती हैं, शी लव्स द सॉन्ग। तो आज मैंने नहीं पूछा कि कौन सा गाना, मैंने कहा जो भी आगे होगा गाना वो मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा पता क्या, प्ले दिस वन फॉर मी, हैप्पी बर्थडे मीरा।

और धीरूभाई लखानी आप एंजॉय कर रहे हैं आज की प्लेलिस्ट. बड़ी अच्छी बात है. हरीश वरसानी, हरीश वरसानी कहते हैं कि देखो जवाब उनकी हरकतों में था. समझ, हरकत जो वो कर रहे थे, जो भी काम या जो कुछ कर रहे थे, जवाब उनकी हरकतों में था और हम बातों में ढूंढते रहे, बातों में ढूंढते रहे. यानी एक मैसेज था, लगता है कि आप उस मैसेज के इंतज़ार में थे, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी थी कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं थे, ऐसा लग रहा है. क्या बात है. हरीश वरसानी. जबीन हीरानी कहती हैं कि ब्यूटीफुल सिलेक्शन. वी आर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग अदर्स बिलीव वी आर हैप्पी देन ट्राइंग टू बी हैप्पी आरसेल्व्स. ये बात बिल्कुल सही है जबीन हीरानी, कि हम हमेशा दिखाते, आप किसी को पूछोगे कि उनका हाल क्या, कहते ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक है. हालांकि वो अपसेट हैं, लेकिन नहीं कहेंगे कि मैं आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, या आज मैं मूड में नहीं हूँ, या आज मैं नहीं. हमने कन्विंस करना है कि हम हर तरह से हैप्पी हैं. चलो ठीक है, करने दो. रसिला, रफ़ी साहब वॉज़न्ट जस्ट अ सिंगर, he became part of many people's lives. His humility was just as striking as his incredible talent. कहती हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब बड़े इनकसारी पसंद थे. वो कभी फड़े नहीं मारते थे और अपने आप को ऊंचा नहीं समझते थे, सुपीरियर नहीं समझते थे. His humility was just as striking. कहते हैं उनकी जो काबिलियत थी ना, उतनी ही उनकी जो ह्यूमिलिटी थी वो थी. इवन आफ्टर रीचिंग लेजेंडरी स्टेटस ही स्टेड सॉफ्ट स्पोकन, ग्रेशियस एंड अर्नड जेन्युइन रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन अराउंड हिम. ईच न्यू जनरेशन स्टम्बल्स अपॉन हिज म्यूजिक एंड फॉल्स अंडर हिज स्पेल. बिल्कुल, कहते उनके जादू के नीचे आ जाते हैं, तले आ जाते हैं युवा भी.

और सर मैंने केरला की बात करनी थी इंटरव्यू से पहले, लेकिन टाइम नहीं मिला। केरला में क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है काफ़ी सालों से हो रहा है, लेकिन अब आई है खबर, केरला में भारत की पहली इस तरह की सुविधा दी जा रही है बुजुर्गों के लिए, समझो सीनियर सिटीज़न है, 60-70 साल के जो उम्र के हैं, तो इन शहरियों के लिए एक ख़ास महकमा डिपार्टमेंट खोली गई है जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट फॉर द एल्डरली। ये पहली बार है कि किसी भी भारतीय राज्य में ये हो कि डिपार्टमेंट ही खोली जाए केरला की उम्र बढ़ती हुई उम्र में। सामने केरला की जो आबादी है बढ़ रही है और बेशुमार केरलाइट्स जो हैं वो अकेले रहते हैं, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं, वो काम करते हैं क्या करें। अब हुकूमत सीनियर केरलाइट्स के लिए डे केयर सेंटर्स बना रही है, डे केयर फिटनेस के लिए भी इंतज़ाम होगा केरला में। समय केरला में 10 वर्षों में जो आबादी होगी ना बुज़ुर्गों की वो बढ़ जाएगी, 4 लोग होंगे तो उनमें से एक बुज़ुर्ग होगा, यानी 23%, क्योंकि बर्थ रेट भी गिर रहा है। तो चलिए गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: No one plays more of your Bollywood favourites. Butt East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Spice with the perfect blend of your favorite music. East FM, Kenya's premier Asian mix.
0: With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gittel.
2: The university's fund has released 4.2 billion Kenyan shillings in scholarships to support over 400,000 continuing undergraduate students under the student-centered funding model. This disbursement increases the total allocation from the National Treasury for the 2025-2026 financial year to 18.4 billion Kenyan shillings, providing essential tuition fee coverage for students who enrolled in universities since 2023. The use of numberless vehicles during yesterday's demonstrations is both illegal and a concerning indicator that the police service is failing its duty to serve Kenyans. Security expert George Musamali argues that in any crowd control scenario, it is essential for citizens to be able to easily identify law enforcement officers. He warns that this trend makes it nearly impossible for IPOA to identify officers who engage in the use of excessive force against protesters. Here's our very own Charity Chigulu with more details.
3: Musamali says the new trend where police officers hide their identity during crowd control cannot be regarded as policing, but instead an intimidation and a sign of dictatorship.
2: Thanks, Charity. The United Arab Emirates has introduced visa on arrival for eligible Kenyan passport holders. The policy, which took effect on June 25th, allows Kenyans with valid residence permits from the United States, the United Kingdom, Canada, Australia, Japan, Singapore, South Korea, New Zealand, and European Union member states to obtain a visa on arrival instead of applying before travel. WhatsApp has introduced new safety features to help users identify and avoid online scams. The app now provides safety information when someone adds a user to an unfamiliar group and is also testing warning alerts that appear before users start chats with unknown contacts, with Meta saying the measures are designed to protect users from fraud as cyber criminals increasingly target messaging platforms. Finally, Pope Leo has cautioned that artificial intelligence is never morally neutral, arguing that every algorithm reflects human choices, priorities, and values. Speaking on the ethical implications of AI, the Pope said technology inevitably shapes society through what it measures, ignores, optimizes, and how it classifies people and situations, underscoring the need for responsible and ethical development of artificial intelligence systems. But that's the news update on East FM.
0: East FM News. All the favorite songs you grew up listening to. And the premier mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.
4: और लंदन से सैली डार, आपका मैसेज मिल गया है कि खुदा में भरोसा करें. बहुत खूब. अब चलते हैं, बात करते हैं, इंडिया में है मंजुला विश्वकर्मा.
5: समय और समझ दोनों एक साथ खुश किस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है. जुमा मुबारक सबको परवीन जी.
4: बहुत मेहरबानी मंजुला विश्वकर्मा. बात करते हैं सलीम मेहर, लंदन.
6: अस्सलाम वालेकुम परवीन जी. सलीम मेहर फ्रॉम लंदन. Don't store dreams in your eyes. They may roll down with tears. Store them in your heart. Each heartbeat will inspire you to fulfill them. Good morning to you, Parvinji. Juma Mubarak to you and all your lovely BMSR listeners. Have a lovely
4: all
6: weekend.
4: All your good listeners. Bahut acche Salim Meher. Aur Bobby Osman, aapne sabko kaha hai जुमा मुबारक. और एक
7: आदाब परवीन जी, अभी आपका इंटरव्यू चल रहा है तो पूजा जी ने बताया कि ये जो नैरोबी में एसएसटी में जो होने वाला है अनुमान चालीसा और 158 का, वो ग्लोबल वाइज सबसे बड़ा है. तो
4: लग रहा है कि समिन रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है. चंद्रिका वासंत गोसाई, बहुत मेहरबानी, आपका मैसेज है. देखती हूँ आपकी भी एक कॉल
8: जाने ही वाले हैं, लेकिन इंटरव्यू सुना तो और आशा बढ़ गई. हम जाएंगे ही जाएंगे फैमिली के साथ, एंजॉय करेंगे. थैंक यू वेरी मच.
4: अब कोई टेक्निकल इशू है, सारी कॉल्स जो हैं वो एंड में सुनाई नहीं दे रही। अच्छा, गुड मॉर्निंग, और आप हैं मेजर और यास्मीन वांजा, मेहरबानी। अमीर अली राना, आपने कहा है परवीन जी, इज़ इट ट्रू दैट 50 नेशंस साइंड टू फॉर्म यूनाइटेड नेशन बट देर आर अ कपल ऑफ नेशंस हु कैन वीटो द रेजोल्यूशंस टू देयर फेवर। अमीर अली राना, दैट्स द एग्जैक्ट थिंग जो कि ना इस इदारे को बिल्कुल नाकाम करती है। 50 मेंबर हैं, वो ज़्यादा हैं मेरे ख्याल से, पर इनमें एक दो को हक है फैसला यूनाइटेड नेशंस का, एक भी वीटो करे ना तो वो फैसला उस पर अमल नहीं होगा। और मेहदी हसन प्ले करने के लिए शुक्रिया अमीर अली राना, आई एम ग्लैड यू एंजॉयड, और सो इंटरेस्टिंग द इंटरव्यू हर ऑल अबाउट विश वॉज आई वॉज देयर। रंजन विनोद ने कहा है बहुत ही अच्छा होता अगर मैं वहाँ होती। और टू सपोर्ट सीनियर सिटीजन्स केरला में यासर ने क्या लिखा है वो थोड़ी देर के बाद, पहले ये

0: और अश्विन दोषी ये आशा भोसले है मुकेश के साथ.
1: यस डेफिनेटली. ये थी फिल्म प्रवीण जी, हिट फिल्म हुई थी हम हिंदुस्तानी.
0: हम हिंदुस्तानी का है ये. अच्छा.
1: यस यस. स्क्रीन पे जॉय मुखर्जी और हेलन गा रहे हैं.
0: ओ हेलन पर है. अमेजिंग.
1: लिसन फॉर अ चेंज इनको डांसिंग का रोल नहीं मिला था.
0: अच्छा.
1: रियली गुड रोल मिला था.
0: गुड रोल में उन्होंने क्या लिबास पहना हुआ था, कपड़े के मुझे तो यही देखना
1: तो,
0: है. नहीं, इनका कॉस्ट्यूम
1: देखो, फैमिली स्टोरी थी पर
0: तो सारी पहनी होगी.
1: उधर सास ससुर सभी थे.
0: अच्छा. फिर
1: मेन हीरो हीरोइन थे सुनील दत्त एंड आशा पारेख.
0: अच्छा. ओके.
1: मेरे भैया छोटे भैया ऐसी स्टोरी थी.
0: हाँ.
1: या एंड फिल्म हिट हुई. ये सुनील दत्त और आशा पारेख की एक्टिंग भी बड़ी शानदार थी.
0: क्या बात है.
1: एंड यस एंड म्यूजिक था प्रवीण जी उषा खन्ना. उषा खन्ना इज ए वाज ए आई थिंक दिस वाज हर नहीं उषा खन्ना का डेब्यू नहीं था. डेब्यू तो दिल देखे देखो थी.
0: हाँ.
1: लेकिन ये सेकंड फिल्म थी. इट इज अंडरस्टूड के वो उषा खन्ना वाज ट्रेन्ड बाय ओपी देयर.
0: अच्छा. पर कितनी फिल्में बहुत कम मिली इनको उषा खन्ना को.
1: यस यस उषा खन्ना को फ्यू मिली लेकिन शी वाज टैलेंटेड.
0: या सिर्फ एक फीमेल थी हैं म्यूजिक डायरेक्टर.
1: यस यस उन टाइम के. यस
0: उन टाइम. उस टाइम.
1: लेकिन मजा आ गया है.
0: या बड़ा अच्छा.
1: अच्छा अच्छा सभी को पसंद पड़ा.
0: राइट. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. और समन अश्विन दोषी में बताते यासर भी बता रहे हैं, कहते हैं कि वो केरला में तो ना स्टूडेंट्स को ये काम दिया गया है कि आप करेंगे कॉल सीनियर सिटीजन्स को रेगुलरली, उनको कॉल करेंगे, उनके साथ बात करेंगे और फिर एक हेल्पलाइन भी शुरू की है, एल्डर हेल्पलाइन. वो टोल फ्री है, मुफ्त में जो बुज़ुर्ग लोग हैं केरला के वो कॉल कर सकेंगे किसी अपने को, किसी दोस्त को, या जब मदद की ज़रूरत हो. या सर थैंक यू वेरी मच इंडीड. ये बड़ी अच्छी बात है जो केरला में हुई है.
2: गुड मॉर्निंग. ओह गुड आफ्टरनून. केम छो बदा ईस्ट एफएम लिसनर्स. जुमा मुबारक. जय श्री कृष्ण. जय सियाराम. जय स्वामीनारायण. सत श्री अकाल. जुमा मुबारक. मनहर पटेल किसुमु. एक भाई डेंटिस्ट ने फोन करे छे अने बोलता है कि एक दांत निकालने का आप क्या चार्ज करते हैं. तो डेंटिस्ट ने बोला मैं 2000 चार्ज करता हूँ. तो डेंटिस्ट ने बोला क्या करना है. तो कि एक ही दांत निकालना है पर 2000 तो बहुत है, थोड़ा कमती करो. तो डॉक्टर ने बोला चलो तुम अच्छे आदमी हो 1000 दे देना, लेकिन मैं वो उसको बेहरा नहीं करूँगा, तो ऐसा ही निकाल लूँगा पर दर्द होएगा. तो बोलता है कि कोई नहीं पर कुछ कमती करो. तो के 1000 तो बहुत है पर अभी वो कमती और करो. तो डॉक्टर ने बोला चलो 500 देना, मैं प्लायर्स से खींच के निकाल दूंगा. तो वो आदमी बोलता है नहीं नहीं नहीं वो भी बहुत है, थोड़ा और कमती करो. तो फिर डॉक्टर ने गुस्से में आके बोला तुमको दांत निकालना है ने इधर आ जाओ, जो मेरा स्टूडेंट्स है ने जो प्रैक्टिस करते हैं ने सब लोग उसको हम दे देंगे, वो संभाल लेंगे, 50 रुपये में हो जाएगा. तो वो आदमी ने बोला चलो ऐसा करो मेरी वाइफ है ने उसका निकालना है, मैं भेज देता हूँ. थैंक यू मनहर पटेल किसुमु.
0: क्या बात है. बगैर एनेस्थीजिया के तो 1000 है. उसके बाद वो कहते हैं कि देखो मैं प्लायर से भी खींच सकता हूँ आपका दांत. वाह बहुत अच्छा जोक था मनहर पटेल. और समझ अभी भी नील गगन की चमे अब यहाँ पर है नीले

0: नितेश मालदे, थैंक यू, आपने ग्रीट किया है, सभी को जुमा मुबारक कहा है। रंजन विनोद, नाइस जोक ऑफ मनर। सोनल मोदा, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, मेरा फेवरेट गाना सोनल, थैंक यू। समिन, अब मुझे एक बात बता दें कि 8,000 मीटर आप ऊंचा चले जाएं, 8,000 मीटर की ऊंचाई पर डेथ जोन, जी हाँ डेथ जोन है, कहाँ है ये मैंने आपको बता दिया कि हाइट कितनी है, डेथ जोन है कहाँ? 07011061061 पर जवाब दीजिएगा।
1: It's 12:19.
2: We unlocked Gavar for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.

0: On East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: तो दिल से दिल की बातें होती हैं और दिल से कह दो, और कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हम शायद कह नहीं पाते. दैट्स एग्जैक्टली वॉट दिल से कह दो इज़ ऑल अबाउट. अभी हमारे इलेक्शंस आएंगे बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर में. ऐसे लग रहा है बस कल ही हो जाने वाले जिस तरह से हालात है हमारी कंट्री के. बट हियर इज़ कमिंग बैक टू बिट मोर पर्सनल. थैंक यू परेश फॉर शेयरिंग दिस विद मी. That if you have an election in your building, if you have elections in your building, society or club, or there are two candidates, okay? One is very efficient, but you don't like him at all. And one is just okay, but you like him a lot. Which one would you, which one you go with, your heart or your mind? Two candidates for election in your building, society, club, whatever in the office. एक बहुत efficient है पर उसको आप पसंद नहीं करते और दूसरे को आप पसंद नहीं करते but वो okay है. आप किसके लिए वोट करेंगे और क्यों? Okay, let's do a bit दिल की बातें on दिल से कह दो with Nilufar on East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: All right, this is Retro to Right Now with Niloufar on East FM, Kenya's premier Asian mix. So, the question is, who would you vote for, okay? Sonal is saying, I would vote for someone I like. Efficiency aayi jayegi, baad mein jaye. I like this. Sab hum ek hi thali ke chatte patte hain. And Jayashree said the same thing. Yes, I would vote for someone who is a good person and I like him. Even if the efficiency is less, wo built up ho jati hai with time. I've got another message here. I would, okay. Kruti saying, I would generally lean towards the efficient candidate provided they are competent, respect the law and democratic principles and use their abilities responsibly. Personal likability matters, but good governance usually has a bigger impact on people's life. Okay, if the efficient candidate was dishonest, abusive of power or unethical, then that changes the calculation. Competence alone isn't enough. In short, you'd prioritize character and competence over personal likability. Fair enough, that is your personal choice. I've got another message here from Meera sharing the same space as Kriti, saying I will vote for someone who is competent and knows his job. My personal liking, not liking doesn't matter. Okay, great. At least we know who thinks what. Thank you so much for your answers and your wonderful company. We are getting into the next hour of the show.
1: East FM. East FM. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
2: East FM पे शुक्रवार की खबरें, पहले खबरों की सुर्खियां. रिगाथी गशागवा का 25 जून पे बयान. कल की डेमोंस्ट्रेशन में हिरासत में लिए गए शहरियों की कानूनी मदद. स्पेन में शदीद गर्मी में मौतें. बेजिंग बांग्लादेश तावन चाइना की मदद का ऐलान. खबरें तफसील से. साबिक डेप्यूटी प्रेसिडेंट रिगाथी गशागवा ने जेनजी हुकूमत का विरोध करने वालों का शुक्रिया अदा किया जो उनके कहने के बाद सुरक्षित रहे और कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी. इस तरह मौतें नहीं हुई जवानों की डेमोंस्ट्रेशंस में. नेशनल असेंबली में काउंटीज को रकम फराहम करने के बिल को मंजूरी दे दी गई. 428 बिलियन शिलिंग तरक्याती मंसूबों और जरूरी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे. लॉ सोसाइटी ऑफ केनिया दर्जनों केनियंस की कानूनी मदद करेगी जिनको 25 जून के धरनों में भाग लेने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया. वकीलों की टीम इमदाद देने के लिए बना दी गई है. सिक्योरिटी के माहिर जॉर्ज मुसामाली ने कहा है कि पुलिस की भारी नफरी और सड़कों पर नाके प्रोटेस्टर्स को रोकने में सफल रहे मगर ये तरीका सही नहीं था. आलमी खबरें. स्पेन में शदीद गर्मी की वजह से 212 शहरी चल बसे चार दिनों में. तारीख का सबसे गर्म समर रिकॉर्ड हुआ है. स्पेन पूरा यूरोप गर्मी में झुलस रहा है. हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड उबूर कर चुकी है. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बीजिंग में वाटर रिसोर्सेज के वजीर से मुलाकात में फैसला किया कि चाइना बांग्लादेश की नदियों के पानी के निजाम की देखरेख में मदद करेगा. वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में चाइना बांग्लादेश को टेक्नोलॉजी फराहम करेगा. वेनेजुएला में दो शदीद जलजले आए, 1000 के जख्मी होने की खबर है. 240 शहरी जान बहक हैं. कराकस और ग्वेराला में 100 इमारतें गिर गईं. भूकंप 7.2 और 7.5 शिद्दत के थे. 1900 से लेकर अब तक के ये बदतरीन जलजले हैं. आलमी मंडी में क्रूड ऑयल खाम तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है. ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक ब्रेंट क्रूड 72 से $91 फी बैरल हो गया है. जंग के बाद की ये सबसे कम कीमत है. पहली मर्तबा भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 300 सरकारी तोहफे पब्लिक के सामने रखे हैं कि वो उन्हें खरीद लें. सियासतदानों को मिलने वाले उपहार तोशाखाना में रखे जाते हैं. नीलामी के लिए पेश हुए गिफ्ट्स में ओमान की चांदी की तलवार, लंदन से मिलने वाला चाय का सेट और रोलेक्स की घड़ियां हैं. और डेनमार्क में इस्लामिक आजान को बैन करने पर गौर हो रहा है. डेनिश पब्लिक मकामात पर नकाब पहनना मना है. अखबार में शाया हुई रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क को इस्लामिक असर से सुरक्षित रखने का फैसला हुआ है. मुल्क को इस्लामाबाद बनने नहीं देंगे, कहा है इमिग्रेशन के वजीर ने. ये थी आज की खबरें. मैं हूं परवीन.
3: Retro to right now on East FM.
0: All right, so we are in the next hour of this show and we will keep rocking and rolling as always. I have some fantastic music, starting off with Tanish Bachchi, I have Udit Narayan, Fahim Abdullah, I've got Kumar Sanu, jaise bahut hi acche mix artist coming up for you. Keep it East FM.

यू नो मैं वो मोमेंट इमेजिन कर रही हूँ. इमेजिन शाहरुख खान पहुंच गए एक इवेंट में इन मैंगलोर. लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उस इवेंट में शाहरुख खान आएंगे. एंड जस्ट इमेजिन व्हाट दे मस्ट बी लाइक दैट, व्हाट क्रेज एंड फ्रेंजी दे मस्ट बी गोइंग थ्रू. बट ही इज वेरी हम्बल, यू नो, इज रियली स्वीट. आई हैव नेवर मैनेज टू कम अक्रॉस शाहरुख खान एट एनी आईफा दैट आई हैव अटेंडेड, बट आई हैव हर्ड ही इज अ लिटिल मूडी जस्ट लाइक सलमान, बट जनरली वो काफ़ी चिल्ड हैं. चलो अच्छा है, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं हाउ टू हैव अ लिटिल चिल्ड लाइफ इफ यू हैव किड्स रनिंग अराउंड एंड इन यू इन योर लाइफ वेयर यू नीड टू नाउ प्लान देयर थिंग्स. सो वेलक्रो शू क्लीनर के बारे में मैंने बताया आपको, पजामा पार्सल्स के बारे में बताया. इनफैक्ट आपके छोटा बेबी है जिसको नहाने से एलर्जी है. आई थिंक माई डॉटर ऑलवेज लव्ड बाथिंग, बट ऐसे मैंने कई बच्चे देखे जिनको पानी शैम्पू आँख में चला जाए तो मतलब हो गया काम. सो दे अवॉइड शावरिंग, यू नो, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं. सो गिव देम अ फेयर पेयर ऑफ लाइक फन स्विमिंग गॉगल्स, यू नो, अगर आप उनको टब में ले ला रहे हैं या बाथ टब में ले ला रहे हैं तो वो गॉगल्स से भी खेलते रहेंगे एंड देन दिल बी बिजी विद दैट. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर लिटिल वंस, यू नो. एंड देन I like this, someone had shared with me some time back, it's called the Tada list. So parenting jo hai, as a parent it feels endless, aapka bachcha koi bhi age ka ho. So instead of doing a to-do list, keep a running Tada list of everything you actually accomplished in a day to give yourself a mental boost. तो टू डू तो हम सब बनाते हैं, टाडा लिस्ट बनाओ कि भाई मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, वाह. एंड देन गिव योरसेल्फ दैट लिटिल पैट एट द बैक लाइक वेल डन मॉमी.

0: playing for News to FM, Kenya's premier Asian mix. This is the City Lights with Vishal, and hum baat kar rahe hain about if your week actually was a movie title, what would it be? So I've got in a message from Jayshree, and it's interesting, and it says Kabhi Khushi Kabhi Gham. I like that. Dekho, family is important, and this is a very very good title. So imagine karo, pehle humne baat ki thi about मंडे टू फ्राइडे ड्रामा जो होता है हमारी लाइफ में, वो काम पे ये वो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क एंड हसल. ठीक है, सो एवरी वर्क प्लेस एटलीस्ट वन पर्सन लिविंग इन अ बॉलीवुड स्क्रिप्ट. देर आर डेडलाइंस, मीटिंग्स, ऑफिस गॉसिप, ट्रैफिक, एंड दैट वन ईमेल दैट अराइव्स 5 मिनट्स बिफोर यू आर अबाउट टू लीव. सो क्वेश्चन, अगर आप काम कर रहे हो एंड यू थॉट दैट यू नो व्हाट यू कैन लीव अर्ली एंड दैट वन ईमेल ड्रॉप्स, सो व्हाट वुड योर बॉलीवुड मूवी टाइटल बी? वाज योर वीक डॉन बिकॉज नोबडी कुड कैच अप विद यू, क्वीन बिकॉज यू हैंडल्ड एवरीथिंग ऑन योर ओन, और पीके बिकॉज यू स्पेंट द होल वीक वंडरिंग व्हाट ऑन अर्थ वाज गोइंग ऑन. So give your week, your work week, a Bollywood movie title and tell me why it might sound very familiar to someone listening right now. अगर आपकी movie week, अगर आपका week जो है अगर वो Bollywood movie होती तो आप कौन सा title देते? Imagine करो काम, it could be anything. जैसे I've got a message from Jayshree, she goes on to say that, you know what, कभी खुशी कभी गम, and it's absolutely okay. So, काम, it could be related to work, it could be related to family, it could be related to relationships, it could be related to friendship, it could be related to anything. Share your thoughts with me on 0701-106-106 and your Mix or Beat Challenge. Coming up next.
1: All the favorite songs she grew up listening to. And the premier mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.

One more time. चलो एक रिक्वेस्ट आई है, स्पेशल रिक्वेस्ट है, एंड मैं आपको आई एम गोना गिव यू अनदर 3 मिनट्स टू नेम दीज टू सॉन्ग्स. यू कैन शेयर योर आंसर्स विद मी ऑन 0701106106.